0: in negotiating union, the election will be held by the employer, and then only the negotiating union will be recognized. So that is also one the democratic way. And negotiating councils, where some it happens that you will not get the 51%, because the criteria for negotiating union is 51%. So sometimes it happens you will not get 51%. So then another concept has also devised. What negotiating council means? If you have get 20%, then you will have a one member in the council as well. So likewise, we can have five members in that particular council. So by involving all trade unions in that particular industry, so that all demands of the workers can be put forth before the employer. So this is one of the important reforms which the government has done. First question comes into the mind of the worker that, okay, I got so many provisions in the various courts, where I will go? If some dispute is there, if some problem is there, then where I will go? So in this particular code, we have provisioned the grievance redressal committee, and it is mandatory if you have if you are employing more than 20 workers, 20 or more than 20 workers, then you have to constitute this grievance redressal committee. And this grievance redressal committee itself have representative from the employers as well as representatives from the workers. So it is a body which will provide you the immediate redressal of your grievance, so that it should not, you know, it should not convert into a big dispute. So this is first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, trade unions या कोई भी miscreant व्यक्ति उसको misguide कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस particular industry को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा worker हैं, उसमें एक वर्क कमेटी भी बनाई जाएगी, और उस वर्क कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को वो एड्रेस करे. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है, और वर्क कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी, सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क्स कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल्योर हो जाए सेटलमेंट. अब कौंसिलर ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है, और वो सीधे जा सकता है. कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा, जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाए.
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन ग्रीवेंस रिड्रेसल

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-member tribunal। पहले केवल 1-member tribunal था, अब हमने बना दिया है 2-member tribunal, और जिसके अंदर एक जुडिशल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं जिसके अंदर 2-member tribunal है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूँगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से, या मैटरनिटी बेनिफिट या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज़ को सुने। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पर वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा आपका, डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है, या बोनस के डिस्प्यूट हैं, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से, तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई, ESI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज

0: जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसको कवर किया गया है इसमें। सो आपका 80% से ज्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा। इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPFO और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है। और जो ये सारे चीज़ें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करेंगे। सो इसमें भी दो अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज, जो ग्रेचुटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं हैं इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्ड्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न है, सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज़ का प्रावधान किया गया है जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ और अपेलेट अथॉरिटीज़ का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है, मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीज़ों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: You were listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Srotalindavarku, Department of Justice, customized స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రాం విన్నారు. ఆకాశవాణి అనంతపురం కేంద్రం ఇప్పుడు విందాం చిత్రసీమ కార్యక్రమంలో సినిమా పాటలు. ముందుగా

समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले 22 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament were adjourned till 12 noon following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. In the Lok Sabha, when the house met at 11 a.m., the presiding officer N.K. Premachandran tried to take up the question hour, but opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over alleged police action during students' protest. In the Rajya Sabha, the ministers laid papers of their concerned ministry on the table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the 0 hour, but due to continued sloganeering, the chairman adjourned the House till 12 noon. Proceedings have now resumed in both houses. Prime Minister of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete.
1: मेरे यहाँ मुझे 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण भारत को लगा

0: Bambatha's parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today, Prime Minister Narendra Modi says India scripted a successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Priyanka Arora. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
4: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे, कई मांग है कि सीबी

0: सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो, सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
2: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
1: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। 3 जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में

0: शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दो पहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है, राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
3: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश

0: శ్రోతలు ఇంతవరకు చిత్రసీమ కార్యక్రమంలో సినిమా పాటలు విన్నారు. ఆకాశవాణి అనంతపురం కేంద్రం, సమయం 10 గంటలు. పార్లమెంటులో జరిగిన ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: సభామే ప్రశ్నకాల్ కే దౌరాన్ హుయి కార్యవాహికి రికార్డింగ్ సునేంగే. దిస్ ఇస్ ద ఢిల్లీ స్టేషన్ ఆఫ్ ఆకాశవాణి. ప్లీజ్ స్టాండ్ బై ఫర్ అవర్ నెక్స్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్. యూ విల్ నౌ లిసన్ టు the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today.
2: Maniniya Sabha Sado, Maniniya Sabha Pati Ji.
3: Question hour, question number 226, Dr. Sri K. Lakshman Garu.
4: Prashan Sankhya 226. क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 24 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
3: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव.
5: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure, leading to increasing electricity demands, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
4: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
6: Sabhapati Mahoday, पॉलिसी 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है. लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है. और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है.

को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा, और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड प्रोत्साहन मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये डाक से पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सर्कुलेट किया गया था, और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, अभी फाइनलाइज करने के राह पर है। और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड की शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये कंसर्न है। सभी डिस्कॉम ये लगभग घाटे में जा रहे हैं, और टोटल देश भर के डिस्कॉम का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तक टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी इसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लान परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम जिसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है।

0: केवल किसान किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है, और कंपोनेंट सी इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है। अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो माननीय, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है। कोई आएगा तो अच्छा है, पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सत्रम सिंह सांडो जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती हैं प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी में थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, सेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्ण सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है, और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 16 अगस्त को 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय खंडकालिया जी, श्रीमान विजय खंडकालिया जी,
3: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूरी माता ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the central transmission utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of

0: commissioning and does not constrain the planned capacity of future expansion, sir.
1: Honorable Minister, Sudhappan Mahoday, अच्छा तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद अब आरओडब्ल्यू का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइंस मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको और वहाँ की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहाँ कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहाँ इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहाँ कहीं भी विषय कर रहे हैं वो पुरुषों के अलग से

0: 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे
1: देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा, तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी
2: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है। आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
0: आदरणीय मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है और आज भी हमारी तैयारी है तो 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहाँ तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब देंगे।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी विजयवाड़ा केंद्र।
5: ఆకాశవాణి అనంతపురం కేంద్రం. చిత్రసీమ సినిమా పాటలు విందాం. ముందుగా హాలీవుడ్ చిత్రం కోసం టిప్పు బృందం పాడిన పాట, సంగీతం గురుకిరణ్.